जनता को परिवर्तन सकते सबको राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय हित का संदर्भ में सरकार ने आवश्यक रहकर प्रश्न पारे आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट आने जाने के बेला सरकार ने नया सार्वजनिक सवय साधन को दर्ता रोका कर दर्ता रोका को निर्णय यातायात व्यवस्था विभाग ने नेपाल प्रवेश यातायात मंत्रालय और यातायात व्यवस्था कार्यालय नया सार्वजनिक सवय साधन का नगराने परिपत्र वायु प्रदूषण ईंधन को मूल्य वृद्धि और ट्राफिक जाम नियंत्रण करना भाई नया सार्वजनिक सवय साधन

स्थान ओम प्यालेस धनगढ़ी गाड़ी र पश्चिम सहकारी स्वास्थ्य लिमिटेड धनगढ़ी गाड़ी सम्पर्क नम्बर 091-5020-83।

0: बनाने में सा पेमेंट में सामना होने में सा ऐसे ही अस्पताल टेस्ट करने में सामना होने में सा हम तो एक हाई फी बात के से दुई ऐसे फिटी आस वाले को ना होने चाहिए बच्चे एक तो इसे बच्चे को तो वह ऐसे जस्ट पेस की जो पहले हमने जो कैसे ना होने में
1: अब नाम आज तो नहीं तो मेरे को ये छात्र प्रोग्राम खरीद उपस्थान लगे सर इसका को कलेक्ट करके बने ऐसे कसर
0: अब यह चेतन गलत करेंगे खोजी गई सके खंड में

सर्वप्रथम स्थान बासमती नगरपालिका एक चेपाङ समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक बासमती नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बासकडी।

सिकार को फलफूल आयोजित खाना नियमित रूपमा खाए। जंक फूड कम गरी सन्तुलित खान रोजे। स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्यका आधार हो। रेडियो पूर्वाधार सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी जनहित प्रणाली सन्देश।

सुरक्षित तरिकाले आगी बुझाई बलिउड हिट चेतन अनुसार बनाउन आगी लगाइदा।

0: सम्म तीन लाख ऋण लिएन तीन लाख से फेर तिर्सेको अपमान तिर्न पर्ने परिवार छ
1: अपमान तीन लाख रुपियाँ ऋण लिएपछि तीन लाख रुपियाँ फिर्ताकै छैन माथि फिर लिएर भेटमा त्यसलाई ब्याज तिर्न पर्छ खाना त अपना खाना जग्गा अवश्य अपना सामु

0: सन्तुलित खाना खाई, व्यायाम सब गरी,
1: धूम्रपान मदिरामा से पूरा रही, तनाखना नियन्त्रण करी,
0: आज मेरो एकाधिक जीवन अचरा निशामा रोगों से बाँचे स्वस्थ जीवन अपनाई।

0: सर्वा आत्म्याची नियंत्रणा किती स्वरूपात सांगायला एक परत असे
1: हस्तांतर करलं एक अमूल्य प्राकृतिक स्रोत हो वनस्पती व वन्य जंतु संरक्षण ने करत मानव जाती जीवन संभव निम्न होते या संरक्षण हमारा सब ये ड्यूटी
0: असीम अमूल्य संपत्ति आजादी का कारण से छेन भरमनी पीड़ित हो सकता उन्हें उससे बनवा आजादी नियंत्रण करना हमारा सब उन पर दायित्व कर्तव्य हो
1: आजादी में से भरना हो पसी तो पड़े ना
0: हमारा सब कुछ आपन बनवा क्षेत्र में और भी देखा पड़ेगा सुखा समय ऐसा से आगा पर मरमत सुना अनुसार सफाई करी
1: दीदी चुरोत माखर टीका आगे बुताई बनवा ने फाटी
0: बनवा मित्र भाई बने का काम नहीं करी
1: बनमो पिकनिक खाए गई है उन क्षेत्र में रहर आदि मनुष्य बुटा के चला छोड़ी
0: सुखा मौसम बनमा आदि लगना फुसफुस सलाई लेकर निकलनी नहीं
1: बनमो आदि लगक देख से लगक बन कार्यालय सामुदायिक बन को प्रहरी हर खबर पाई सब जना सुरक्षित तरीका से आदि बुटाई बनमो रहता क्षेत्र अनुसार बनमा आदि लगेगा आतलागी भाइतेला कोरो फेताव करावरे आतलागी मसे नुकसान मिलक दीको असुरी कैकर 60,000 रुपया तह जरिमानवा 3 वर्ष कैकर 200,000 विशेष था वह वर्षे बलवन आगे लगेनवा आतलागी परिषद ने क्रियाकलाप नहीं करी वो अपराध में शरीफ होकर सदैव भागीदार नहीं बने डिविजन बल कार्यालय बढ़ दिया फोन नंबर 084-24-156

महिला प्रयास कर पठा अन्न पर्टी रूपा गर्भना आदि खेती मूल्य प्राप्त किए। अब कहानी गर्मिया अकेले से जन समस्या अभियान विकसित

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

मई 2083 सात जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय महासरी।

शिमला तिरासी साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे आयोजक बास्करी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बास्करी।

0: सारी नियंत्रण में रखा ग्राम सावन में 5577 जाकर धारक दिया 10 पैकेट गौरव नाम का धारक दिया 46 पैकेट खाली गैस सिलेंडर 3 धान का एक ठो ऑटोरिक्शा रहना था वाली ग्राम का लक्ष्य को सामान आवश्यक कार्रवाई करना ज्यादा पर प्रसार कार्रवाई कुलरिया गोरतिया में कुछ है
1: अखबार अत्याधिक धान संग्रह करने प्रख्यात सकुरिया नगर पालिक बिहार 6 बजे से विद्यालय संचालन करना निर्देश अंतर्गत पालिका का शिक्षा शाखा बिहार 6 बजे से दिन का 11 बजे समय विद्यालय संचालन कर निर्देश अंतर्गत अख्तियार कर्मी का कारण विद्यार्थी का स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ने गति जेठे खार गति नगर सबको विद्यालय में बिहार 6 बजे से कक्षा संचालन करना निर्णय कर शिक्षा शाखा प्रमुख सतीश यादव जानकारी अत्यधिक कर्मी संघ संगठन संजीवन प्रभावित होना बिहार सत्ता कक्षा संचालन अंतर्गत महाप्रतिबाट मौसम सुधार पाँच कक्षा संचालन का समय हेरफेर पर्यावरण अब दरिया क्षेत्र में बिहार 10 बजे से 4 बजे समय कक्षा संचालन बीते आवश्यक
2: श्रीवास्तव

0: दूसरे लोगों में लक्ष्य प्राप्त लगातार के साथ किसान चुप खेला के सिद्धांत का भय के तय
1: कर्जा लिएर नियत बस कर्जा चुक्ता नगर्दा कानुनी कारवाही।

0: बहिनी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रतिनिधि समाजसेवीज्यूहरूलाई आमन्त्रण गर्दछौ।
1: स्थान भाषी नगरपालिका एक चेपाङ, समय 2083 साल जेठ 10 गते बिहान 11 बजे, आयोजक भाषी नगरपालिका।

0: कोनो साइड से बात ना की सही में कोई खाता हो सी ना सब पर से उसका साथ देना लेकिन आप तैयारी करो पर
1: ये तो लगता है खाने साथ में

0: से विस्तृत मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध अनुसंसार अंतरक्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अध्ययन युवक संदेश
1: विषयमा मानवीय एवं शारीरिक क्षतिवृद्ध जनचेतना जगेरा उद्देश्य लिएर अन्तर्क्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लगभग जीवन सन्देशमा आफ्नो स्वागतमा
2: कार्यक्रमको चौथो आजको सर्वप्रथम शिशु बजेटमा काम गर्दै हो नैतिक समयमा
1: विशेष गरेर आर्थिक समयमा विषयमा प्रदर्शन जोखिम ओ बाजार अपने पुनर्जानकारी विषय भ्रमण
2: जानकारी देने

0: Y Tanaka, durante la fiesta, Paman Nidaska, Mensa Paman Separita. Y Dima Dalka Nidaka Sapanjari, Akamatiski Paraseba, Martina Taxalu, Apan Pazan Paraplax, Sarapaman, Basiavita. Mukra Ara Kozima, Bahad Niska Dalamo, Kaskatabir, Kalabir, Nandavich, Sulidan Parasi, Money Akaman Karala Lakramaska, Martina Taxalu, Karama, Sap Desnabata.
1: Southern City Pumaitika, Kurasanas Kanrat, Southern Dipti Kibara Sartichi, Wasikoi Rote, Southern Dosakota. Upon Don Tamu Samuel, Bazir has happened to be Samaran Zankari Kupata. Musa wasn't the Santamu Victor, Kompon Valo by this Kota, Kun Shapu Dosa Terata Kanapisima Tarabi Rapata. Amrama Gurana Pandavan, Sir Papa Sakanato, Bill Stappen, Samuel Kupata.
0: साथ नुकरण हुए उसे अपन कारों के मैदान का अंदर पंद्रह सत्तर सफाई लेना पड़ा। चपास पत्थरा हीराओ पटकुली खुला खड़ाई पर छापने से नाथी पहिराओ सुखल खासत सही व्यवस्था पर बना पड़ा। रुका अथवा बियामर रुका अथवा दिन में तथा वादी हाथ को ऐसे निवी।
1: राती समय में हम अपन को न दारा माहौल कसी कसी संतानी अपने पड़ा अपने उस कल से दिन साथन का जोखिम और थामा तांकर जिले से आप बताया करो पता
0: देखा जी अब मैं दिक्कत जवाब दे रहा सी आता हूँ बस सुनता सर आदि ना पति क्या सुनेगा वो हमको अपने लक्षण तानी है वो मुझे ना था मुझे डाटक ताने पत्ता मिलता उसे हेर भी हमने कुछ सुनता सर आदि ना रातिक समय में वो काम करना प्यारा मैं संकटन से सिर पर
2: Thank you.

सांसद जोशीमो बाजक लाख पकड़ने पर साप्ताहिक विषय महामन गुजरात सर्वपक्ष संबंधी विज्ञान डॉक्टर के एन पुण्यपति

0: भी स्थापन का आधिकारिक ख्याल तरफ पठाकर स्थापन का दशाई मसी अपने दर्शक उपन बजाई लाग सुरक्षित उपाय भी अपने पठा कुना मत तर्क हो मैं आज रात समय में घर बाहर निस्का पाल कर से तर्क नायक संग नम्मा लठी लेकर भूमि में फक फक बजे दिन्यानपति
1: बिंदु अंकुमार दास पटेल पटेल अपने व्यक्तिगत तर्क दर्शा को कौन लगी थी पुष्पा जी
0: मैं क्या नहीं ये काजी हम सब कुछ ना सर्वदा से सही सुरक्षित रह गया प्रतिबद्धता कर पड़ा वो प्रतिबद्धता अनुसार पूर्व तैयारी वास्तविक उपाय अपने पड़ा सब पदस्थ पासल उपचार केन्द्र में पूर्व तीन स्वास्थ्य अवस्था विषय में था पाएगा बिंदु अंकुमार अनुभाग सुना चिंग खरीदना यह विषय वस्तु छलफना संग रेडियो कार्यक्रम जीवन संदेश का आज की भाग में पुष्पा नेपाल सर्वतन्त्र रोकथाम परियोजना पार्टनरसिप अभिव्यक्ति मिलक आधिकारिक विचार माननीय
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य डाक्टर संख्या मन्त्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सुशीला तथा संस्थान केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै विधिवेदमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदलीय अनुसन्धान केन्द्र समर्थ सहकारीमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँका साथसाथै विश्व भर्का रोटरी फ्रेन्स एवं माटो क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत पक्षको क्यान्सर भएको छ यही भर्तीका कारण केही दिनमा मेरो जीवन समाप्त हुनेछ
2: त्यही धुम्पानका कारण मेरो पहिलो बच्चा अपङ्ग जन्मियो

स्वास्थ्य किशोरी स्वस्थ भविष्य का आधार हो। रेडियो पूर्वाभ्यास सहकारी।

पानी में चाहिए खाई सकता पानी तो सब देखने इसलिए धीरे आने पाए सुखा